सेवा साध न जाने हर राया, कहो नानक कम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यवाज बेनती चो पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। ताव चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दोष सबे तुम काबो, आप दे मोहे बचाबो। सुहि वसे मोर परवारा, सेव से सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिया, सब ऐरन को आस संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर जाऊं तुम ते पाऊं, सेवक से हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप आदे मुझे अबरी है, मन काल का त्रासन वरी है, हो जो सदा हमारे पछा, सिरिया तो जो करियो रच्छा। रा लियो मोरा खनहारे, साहिब संसहाए प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदास कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर भीम प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देवता जशन अपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सर पर जाजने आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सो दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। खड़गड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पिशानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सब पर कृपा दृढ़ कर भूला। संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर विशन, कड़ कड़ के पड़ पड़ की जान। जावुद कर करां कर तारा, पर जातर तव दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सभी तेरा तनरालम, जान बेभेद रियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नीलम आद सांब, ताका मूढ़ चात पेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको गर्भान मानत, महा मूढ़ कह पे न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न भेव। आव अपनी बुद्ध है जेती, बनत पेन पेन तो है तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, के बेसा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंड जर से तरिकीनी, उत्पय खान बहोर राच दीनी। कहूं बुरा जा हम बैठा, कहूं सिंह प्यो शंकर कैठा, सवरी से दुखाए चंबो, आज गासरु से अंबो। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो, दो जते उठत पाता, सगल मलेश करो रणगाता। जे आ तो सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दूत है मरे, पुरुष उन पापरे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल नीट नहीं आए हैं, रचा होए तय सब काला, दुष्ट री तने तिर काला, कृपा दे तन जाए न हर हो, ताके ताव तंग में हर हो। रेत सिद कर्म सब होई, दो सह सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल बहते ताए उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहा, दार दूदो तेरा, खड़ग

हर हर जन कै मर्ख दीना, हर तन जन को आप्रव दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जनेव न जानी। ओत पोत जन हर सराते, सुन संवाद नाम समाते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत परगनी छपै। हर के भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते। तरे पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख रथा। नाम की महिमा संत रिद वसाय, संत प्रताप दुरत सब नसाय। संत का सौंड पागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछे अबर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे। जन कोए सलोक बहुसा त्रिभो सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूज सनाई हर हरे, नानक नाम अमोर आठ पदे। जाप ताप ज्ञान सब त्यान, खट साहित्र सिमृत वख्यान। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सुख त्याग, बनमत दे फिरिया अनेक प्रकार किए बो जतना। पुन दान होमे बोरतना, शरीर कटाए होमे कर राती। वर्त नेम करै बो भाती, नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। नौ खंड प्रथमी फ्रै चरजी पै, महा उदास तपी सरथी पै। अगन माहे होत पुराण, कनक असब हैबर पूंदान। न्योली कर्म करे बुआसन, जैन मार्ग संजम साधन। निमख निमका सी कटावे, तो पी हो मैं मैल न चावे। हर के नाम समसर कछ नाए, नानक गुरमुख नाम जपत कर पाए। मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान मन ते हुटै। सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जा। इस देही कबो साधना करै, मन ते कबहु न बिख्या टरै। जल धोवै बोधे अनीत, सुध कहाँ होय काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊचै, नानक नाम उदरे पतत बहमूच। बहु सियान जमका भो पियापै, अनक जतन का तिसना त्रापै। भेख अनेक अग्नि बुझै, कोट पाव दरकैनी सजै। छूर सुनाई ऊ प्यार, मोह प्यापे माया जाल। अवर करतूत सगरी जम डानै, गोपिंद भजन बिन तेली माने। हर का नाम जब दुख चाय, नानक पूरे सह सबाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लाकै। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै, सत्संग ए होमे छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साचना की सरणी परै। जिस जन को प्रदत प्यासा, नानक ताके बर बर जासा। सगल पुरख में पुर प्रदान, सत्संग जा का मिटे अपमान। आपस को जो जाने नीचा, सो कनिये सब ते ऊचा। जाका मन होय सर करीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मटाना, पिख है सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन समदृटिता, नानक पाप नि निपा। निर्धन को तन तेरो नाव, निथावे को नव तेरा था। नमाने को प्रा तेरो मान, सरकटा को देवो दान। करण करावन हर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जन हो आपे, अपन संग आप राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक कब न जान सकोए। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मर हिरिया। सगल उद्यम में उद्यम पला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में पानी, हर को जस सुन सुन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे काट बसे हर नाम सलोक। निर्गुण यार एणिया, सो प्रसदा समाल। जिन की आत चीत रख, नानक निभि नाल अट परे। रमैया के गुंचे प्राणी, कवन मूरते कवन। दुष्टानी जंतु साज सवार, सिंगारिया गर्भ अगर मैं जने उपारिया। बार बिरता तुझे प्यारे दूध, पर जोपन भोजन ससूद। बिर प्या ऊपर साख सहन, मुख अप्याओ बैठ को दैन।
ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਰਹੁ ਤੋ ਨ ਨਸੀਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੀ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ, ਸਤਪੁਰ ਆਦਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਹਸੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪ ਕੁਮੁਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਸਾਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਤਿਸਹਿ ਤੇ ਆਖ ਸੰਰਚਨਾ।

नहीं हो तू आस गवन है। करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संसाई स्वाभि न चीत जो पैराई तां सो प्रीत। बलुआ के ग्रह पितर बसे अंत केर मै रंग रसै दृढ़ कर माने मनेह प्रतीत काल ने आपे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोत्र आहो जोगत बिहाने के जन्म नानक राख रिहो आपन कर कर्म। तू ठाकर तुम पेरदा जियो पिन सब तेरी राज तुम मात पिता अम्बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत। उचे ते उचा भगवंत सगर समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए स्वाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कृपा नि सलोक। दिन हर पव छोड़ कै लाके आन सुआई नानक कहू न सीजाई पिन नाय पजैठ पदे। दस वस्तु दे पाछे पावे एक वस्त कारण बिखुड़ पावे एक पीना दे दस पीहर दे। तम बूढ़ा को कहाँ करे जिस ठाकर सो नाई चारा ताको कीजे साध नमस्कार। जाके मन लागा पर मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिसने अपना हुक्म नाया सर्ब थोक नानक तिन पाया।

वेद प्राण स्मृत बुझे मूल सुख में जाने अस्थूल चवरना को दे प्रदेश नानक कुछ पंड को सदा देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौबरना में जपे कुना जो जो जपे तो की गत होए साध संग पावे जन कोए कार्य कृपा अंतर तारे पास प्रेद मोद पात्र को तारे सर्व रोग का खुद नाम कल्याण कल कल्याण रूप मंगल कुण काम काहू जो कितने न पाई धर्म नानक तस मिला जिस लिखिया तुरकर जिसके मन पा ब्रह्म का निवास का नाम सत राम दास आत्म राम तस नदरी आदाद संतन पाई तन पास निकट निकटर जान सुदास दर के प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी पर सगर संग आत्म उदास ऐसी युक्त नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म तावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा सोग सदा आनंद तैनय वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पावरम के सगले ठाव जित जित कर राखे तैसा देना आपे करण करावन जो का प्रभावे सोई पुन होगा पसरु आप अंतरंग लखे न जाए पावरम के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाज पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहार श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा पार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अठपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट चार प्यारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के सोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म त्यांता रहे कई कोट कब का विचार रहे कई कोट नवतन नव त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट पैपमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेज्ञातन निकोर कई कोट पर दर्प को हिराया कई कोट पर दुख न कराए कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदे प्रमा जित जित डाबू तित तुलगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोकी कई कोट राजे रसपोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरखन बजाए कई कोट पवन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखत्र कई कोट देवदान इंद्र सशत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस पाए तिस तिस नतारे कई कोट राज सताम सातक कई कोट वेद प्राण सिमतिर सास्त कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चरजी पै कई कोट गिरी मीर स्वंथी वै कई कोट जख किन पचा कई कोट भूत प्रे सुकर मृका सबते निर सबते दून सबते निर सब होते दून नानका पूर्व त्रिया भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी

पसर्यो प्रसाद सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने भोपाल प्रवते हुए प्रमाय समाद ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पावरम के दातन होते आत्म प्रगाल कई कोट तत के बेते सदा निहार रहे को नेत्र कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद अमर पय सद सदे जीवे कई कोट नाम कुन गावे आत्म दास सो सह समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रवे कह दूसर नाई कोई नानक तिरपल हरण जर थरमय सोए अठ पदे करण करावन करने जोक जोत पाए सोई होक खिरमे थाप थापनहारा अंत ने कृपा रवारा हुक्मे अतार अता रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे हुक्मे उच नीच प्यार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाए नान सब मेरिया समाए प्रभ पावे मानुख गत पाए प्रभ पावे ता पाथर उतरावे प्रभ पावे बिन साहते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पत ते उदारे आप करे आपन बिचारे दुहां सिरियां का आप स्वामी खिलै बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करापे नानक दृष्टियों ने आवे कहो मान ते क्या हुई आपे जो तस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए तन सब चले जो तस पावे सोई करे अन जानत बिख्या में रचै जे जानते अपने आप बचै भरमे फूला दह दिस धावे ने कमाए चार कुण फरियावे कर कृपा से अपनी भगते नानक ते जन ना मिले खिन मैं नीच कीट कुरार पार ब्रह्म गरी पनवाद जाका दृष्ट कशु नया पे तिस तत्का दह दुपटावे जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न कने जगदीस जियो पेंड सब्द की राज घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश अपनी बनते अपनाई नानक जीवे देख पढ़ाए इसका बर नाही सात कर्ण करावन सर को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई फन थियो कबहू ऊच नीच में बसै कबू सोख हरख रंग सै कबहू निंद चिंद बिहार कबू उपकार प्यार कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू निरत करे बोपांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू मां क्रोध बिखरा कबहू सर्व की होतरबा कबहू होए बहे बड़ राजा कबहू पेखारी नीका साजा कबहू अप कीर्त में आपे कबहू पला पला काए जो प्रवरा के तभी रह गौर प्रसाद नानक सच कह कबू होए पंडित करे बखियान कबहू मोहतारी लावे त्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख्यान कबहू कीट हस पतंग हो जिया अनक जोन भनमे परमिया नन रूप जो सुहागी दिखाए जो प्रपाए तेव नचावे जो तस्पाए सोई होए नानक तू जाव न कोए कबहू सा संत उपावे उस स्थान ते बो नयापे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं बना मन तन नाम तेक रंग सदा बसे पावरम के संग ज्यों जल में जरिया खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पाए बिसराम नानक प्रभ के सदगुर बान सलोक

कले अर्पदे जिसके अंतरार पान सुनर पाति हो स्वान जो चन में जून पांत सो होत बेटा का जंत आपस को कर बंद का वै जन्म रे भोजन परमावे तन भूमिका जो करे कुमार सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै नानकीहा मुक्त आगे सो पाए धनवंता हुए कार कृपाए तृण समान काश संग न जावै बौलत कुरमान कुपुर करिया पल पीतर ता कहो नाज सबते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसै न बदया पंकारी धर्म रायत करे खुवारे गौर प्रसाद जाका मिटे अपमान सो जान नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्मी द्रपै हर दर गे कुह कैसे गवै आपस को जो पुरा कहावे तसे पुराई निकट न आवे सर्व किरे जाका मन होए कौ नानक ताकि निमर सोए जब लग जाने मुक्ते कछोए तब को सुख नाई कोई जापे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चर नाई चीत जब लग मोह मग्न समाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक को छूटै सहस खटे ला कूटता वै त्रिप्त नया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करै न त्रिप्तावे खप खम मरै बिना संतोख नहीं को राज सुपन मरुत बिरथे सब काजै नाम रंग सर सुख होए बट भागे किसै प्राप्त होए करण कराव ने आपे आप सदा सता नानक कर जा करण कराव न करने हाल इसके हाथ का विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आपे आप सोए जो के शकीनो सपने रंग सब ते दू सबू के संग बुझै देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरे न बिनसिया फे न जाए नान सदी रिया समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचा सबके साथ आप किनु आपन विस्तार सब कश उसका उ करने हार उसते भिन्न कहो किशोए थान तनांतरे का सोए

सुखते डडै। संत के दुखी को नाई ठाव, नानक संत पावितां ले मिलाए। संत का दुखी अर बीते टूटै, संत का दुखी कते काज न पहुँचै। संत के दुखी कुआ, संत के दुखी को ध्यान परमाइए। संत का दुखी उजल पाइय, संत का दुखी अंतर ते थोथा। जो सास पिना मृत के लोथा, संत के दुखी की जड़ किशनाए। आपन बीज आपे खाए, संत के दुखी कौन राखण हार। नान संत पायता दे उपार, संत का दुखी उम्र लाए। ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नी राजै। जो पाप की दनी त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला। जो पुआड़ तिर खेत मैं दुहेला, संत का दुखी धर्म तेरै। संत का दुखी सद मिथ्या कहत, कीर्तन का तुरी पिया। नानक तू तिपाए सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए। संत के दुखी को दर के मेरे से जाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जिपाए। संत के दुखी की पूजे ने आसा, संत का दुखी और चरण निराशा। संत का दुख न तृष्टे कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए। पिया कीर्तन मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके उकरणे हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्यावो सास के राज। सब किश वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेला करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनों कृपा करे तसे अपन नाम दे, बड़ पागी।

कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर के नानकू जन मथा बट पागे ते जन जख माए सदा सता हर के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार से धनवंत गणि संसार मन तन मुख बोले हर मुखे सदा सता जानु ते सुगे। एको एक एक पछाने एतुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया। नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तुखी जानो तृष्णा बुझै। सात संग हर हर जस कहत सब रोगते ओ हरजन रहत अनदन कीर्तन केवल बखिया ग्रस्त मैं सोई निरपान। एक ऊपर जिस जन की आसा तस की कटिया जम की पासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसै न लागे दुख। जिसको हर प्रमंत त्यावै सो संत सहेला नहीं टलावै। जिस पर अपना कृपा करे सो सेवक को कसते डरै। जैसा सा तैसा दटा अपने कार्य में आसमाया। सोदत सोदत सोद सीजा गुर प्रसाद तासा बूझिया। जब देखो तब साक्ष मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नह किस जन में नक्ष मरे अपन चा त्या पी करे अपन जब दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सरसेट। आपे असुर में आपन जुगत रच थाप उताप अबनासी नायक कर्ण धारण तारे ब्रह्मांड। अलख फे पुर प्रताप आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सर संसार उदय तनमंत। प्रभ के सेव सर उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेर लय कृपार गुर का शब जप पे निहार। उनकी सेवा सो इलाग जिसनु कृपा करे बड़भागे। नाम जप पाए विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभु के रान सदा सदा वसे हर संग। सहज सुपाए होवे सो होए करने हर पछाणे सोए। प्रभु का किया जन भी ठिकाना जैसा सा तैसा दटाना। जिस ते उपजै तसमाय समाए होए सो कनदान उनु बने आए। आपस को आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान सरोक। सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन हार। जाके सुन उदरी है नानक तिस पर पदे। टूटे कण हार गुपार सर्व दी आपे प्रत पार। सुर की चिंता जसुन माए तिसते बिरथा कोई नाए। हरे मन मेरे सदार जाप बनासी प्रया पे आपे आपन किया कछु न होए। जिसो प्राणी लुचै कोए तैस बिन नाही तेरा किस काम गत। नानक जप ए करना रूप बंतो नाई मूह है। प्रभ की जो सर कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है। जां सब किस तिसका दिया दर्प असुरा। जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे। जे को होए बहे दातार तिस दिन हार जाने कपा। जिसको प्रसाद टूटे हो रोक नानक सो जन सदा रोक। जो मंदिर को थमे थमन त्यों गुर का शाद मने अस्तमन। जो पखान नाभ चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। जो अंधकार दीप प्रकाश गुरदर्शन देख मन हुए विकास। जो महा उद्यान में मार्ग पावे तो साधु सामिल जो प्रटावे। तिन संतन के बाछो धूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिरलाइए पुरब लिखे का लिखा पाए। दू सुपरा देवनहार अवरत्या तुंत सहजता। जो कश करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान। कौन बासते आई तेरे संग लाभ टरे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप फिर दे माए नान पर सेती कर जाए। जिस वखर को रैन तू आ राम नाम संतन कर पाया। ताजिब मान लो मन मोर राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संते संचार अवरत्या विख्या जंजाल। तन तन कह सब कोई मुखु जरा दरगे सोए। एहो बपार बिरला बपारे नानक ता के सर पर चरण सार के तो पियो अर्प सार को अपना जियो।

बिन भजना बिखया सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक इह तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरू पाप संबीत बिसारो, चरण कमल रद मैं उर तारो, करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गाओ नाम हर वथ। ए धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहि। जिस धन को चार कुंठ उठ धावै, सो धन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बांछ अमीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा भज हर की शरणी। अन क्यों पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्ब निदान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह प्रवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दह दिस तावत आवै ठाए, ताको बिघन न लागै कोई, जा कै हृदय बसै हर सोई। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भोबन सह पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगाज, तित कर जाए बसै अविनाशी, कहु नानक घाटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन मरे सो काचो काचा, आवा गौन मिटे प्रभ से, व्याप त्याग शरण गुरुदेव, इयों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक पावन छूटन हारे, सिमर शास्त्र वेद बिचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटांबर बंता, इनते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्थी रत सवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे स्याने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किलबिख जाहि। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए, नानक गुण गाओ गुण गावत त्रि उतर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिग फैल। होय चिंत बसै सुख नाल, सासगरा सर नाम संभाल, छाड़ सियाणप सगली मना, साध संग पावै सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला, एक सिमर एको मन आहे, किसके गुण गाओ अनंत, मंत्र जाप एक भगवंत। एको एक एक हरे आप, पूर्ण पूर रहो प्रव्यापी, अनेक विस्थार एक ते भए, एक अराध पराशत गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, भरिया तो शरणाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देव हर नाम, साध जना की मांगो धूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तमै ध्यावो, चरण कमल च्यों लागै प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एको टेको आधार नानक मांगे नाम, प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए, हरस पावे बिरला कोए, जिन चाखे से जन तृप तन्ने, पूर्ण पुरख नहीं डुलाने। सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगाश अन दिन निवलाग, बड़भागी जपिया प्रभ सोई, नानक नाम रत्ते सुख होए। सेव की मनशा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेव कीनो सदा निहाल, बंधन काठ मुक्त जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुनी श्रद्धा सा पूरी, रव रया सरसंग हजूरी। जिसका सतन लिया मैं।

बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगम राखै गुरप्रसार को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे भिखती काढ है जन्म जन्म का टूटा गंढ है, गुरपुरै तत् इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरा नाम जपावो, भगत पाए तरिए संसार, बिन भगती तन होसी सार। सर्व कल्याण सूख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का हो तनाश, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुवाओ। नेत्रों पीक दर्शक होए मन बिकसै साध, चरण धोए भक्त जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक वस्तु दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। ता की उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभक्षा दीन दयाल, भक्त वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व घटा करत परपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भक्त जना के प्राण आधारु। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निम खर के गुण गाए। अनेक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी सो बतनवंत, हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहु निवास, सर्ब सुख नानक परगा। श्लोक सारे गुण।

राष्ट्रपति। जब यकार एक कश ना दृष्टेता, पापन तब कहते हो ता, जब धारी आपन सुन समाधु, तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्क सोग कौ किसे व्यापत। जब अपने आप अपार ब्रह्म, तब वो कहाँ किस होवत परम। आपन खेल या वर्तीजा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किसको गणी। जब एक हर या गम अपार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। अपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन, तह जन मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की तास तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभि का, तब चित्र गुप्त किस भूषित लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बांधे। अपने आप आपी अचरजा, नानक अपन रूप आपी उपरजा। जहां निर्मल पुरख पुरख पत होता, तहां बिन मैल कहो क्या तूता। जहां निरंजन निरंकार निर्वाण, तहां कौन कुमान कौन अभिमान। जहां स्वरूप केवल जगदीश, तहां छल छिद्र लगत को कीस। जहां जो स्वरूपी जो संग समावे, तहां किसै भू कौन तृप्तावे। करण करावन करनै हार, नानक करते का नाहीं शुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जहां सर्व कला आपै परवीन, तां बेरकतेव कहां को चीन। जब अपने आप आप उतारै, तो शगन अपशगन कहां विचारै। जाय अपने ऊचे अपने आप नेरा, तां कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा। बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जहां या शाल अशेद अभेद समाया, वहां के सह ब्यावत माया। आपस को आप दे इसते गुण का नाहीं प्रवेश। जहां एक है एक एक भगवंता, जहां एक है एक एक भगवंता। ता कौन अचिंत किस लागे चिंता। जहां अपने आप या पतियारा, ता कौन कथा है कौन सुनने हारा। बहु बेअंती ऊचे ऊचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जाय प्रच्यो प्रपंचया कार, ते गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह भरम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच तो नानक एक है। जहां अवगत भगत आप, जहां पसरे पासार संत प्रताप। दो पाका आपे तनी, उनकी शोभा उनो बनी। आपे कौतक करे आनंद चूज, आपे रस भोग अंदर जोग। जिस भावे तिस आपन नाय लावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे।

मिली सात संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का है सुवाओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटाया ज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पालत दुहिली सुवार राम नाम मंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया मंत्र नाम जपू ले बुलाए दुख दर्द मन ते भौ जाए सच वपार करूवा पारी दरगा निभै कीप तुम्हारी काटे कर खो मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए उबरै राखन हार ते आए निरपाओ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दूख नाम जपत मन होवर सूख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ता के कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखती उदरत सृष्ट चरण कमल जाकी अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताकै निकट न

0: अज्ञानी अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगाश। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिग्री एक कट माह, अनक रंग नाना दृष्टा, नौ निध अमृत प्रभु का नाम। देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत अनाद, कह न जाइए चरज बसमाद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट ब्याप रहा भगवंत, धरन माही आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बणतन पर्वत है पार वरम, जैसी आग्या तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दा दिशे समाहे, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, वाणी प्रभु की सबको बोलाए आप अडोल न कबहु।
1: सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल। सर्व जोत मैं जाके जोत, तारे स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तन में ए बेसास। संजना का पेखन सब ब्रह्म, संजना के हृदय सब धर्म, संजना सुने सो बचन, सर्वव्यापी राम संग्रहन। जिन जाता तिसकी ये रहत, सत बन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सो मन, कर्ण करावन हाथ भाव जान। अंतर बस बार बियोही, नानक दर्शन दे समोही, आप सत किया सब सत, ते प्राप्त सोली उत्पात। ते पावे ता करे विस्तार, ते पावे ता एक अंकार, अनकला लखी ना जाए, जिस पावे ते लय मलाए, कौन नेटकुन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर। अंतर काज साब जनाए, ना ते जन आप बजाए, सरपूता वरतारा, सरबन ना पेकन हारा। सगल समागरी जाका तना, या पंजा सा पे सुनाम, जन खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब के मद अलपत हो रहे, जो कहना सो आपे गया, गया वै आ गया जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इस ते होए सो नाही बुरा, उरे कहो कि ने की करा, परा कर तू तन की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राच, ताकि गन में कही ना जाए, दूसरो इतना सो जी पाए। तिसका किया सा परवान, गुर प्रसाद नानक के जान, जो जान ते सदा सुख होए, आमलाए ले प्रभ सोए। ओ तनवंत कलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया। जानवन कहे सुआ, जन कह संग चेत आवे, नाऊ आप मुक्त मूर्त

पूरे कहे गुण गाऊं अष्टपादी। पूरे गुर का सुन उपदेश पार बहम निकट कर भेक सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अन त्या गोतरंग सिरना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तारो हर धन गे पर लो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम खुश सहज आनंद सा संप परमानंद नरक नवार उदार हो जियो गुण गोबिंद मर्रा पियो चे चितो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पंजन पूरन कृपाल सिम सिम नम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के बचन मलिक लारे रतन सुंत कमात हो दार आप तरे लोके निस्तारे सफल जिन सलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्दा नहद वाजय सुन सुन अन करे प्रभु गाजय पढ़े गबाल महत के माथे नानक उदरे तिन के साथ है सरन जो सो सरनी आए करके प्रभु राम लाए मिड़ गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण होय सेव की सेवा जिनाल बिका तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नान निभी के बमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोहोत निदान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रदान पुरपर सब लोए साव दे उज पाए स्थान बोरना वे आमने जान अर्तन खाड़ ले जन को अर्तन खाड़ चले जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शिनान चार पदार कम प्रगास सब के मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदृष्टि ये दिटेता ए फालती जन के मोहपन है गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए नदान जपे मन कोए सब

संग मिटे संत के रपाते जमते छुटे जाके मस्त कर्म प्रभ पाए साध सन नानक ते आए जिस मन बसै।

साहब जी ओ आज महला पंजवाए कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वसे सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठाण भाई करतारे जियो अपने जी जम पर पारे जो बारक माता समारे दो पंजन सुख सागर स्वामी दैसल आहारे जियो सगले उतर गए सब सो संता पै नाम जगत मंथन हरियावल प्रभ नानक नंद निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे अस्थल सोहन त्योबारे जिते नाम न जपी है मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो हरुकी रोटी खाए संभाले हर अंतर बार न निहाले खाए खाए करे बद भैले ही जान विसुकी वाड़ी जियो संता से रंग न लाए साकत संग वे कर्म कमाए दुलभ देखो अज्ञानी जड़े अपनी आप पाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु

नानक अमल जन का यादार हो वार पै राम नाम व्यापार हो सहज नंद गावे गुण गोविंद प्रभु नानक सह समाया जी हो माज महला पंजवा सो सच मंदिर जिस सच त्याई सूरदास हेला जित हर

संतन तेरे जन काम क्रोध लो पीठा जियो तू मरवैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरे कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवे बिनसिया प्रभु बिठा तीठा जियो नानक नाम त्याए त्याए जीवे बिनसिया परम पो तीठा जियो मार महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे तिसको मरते कढ़ी न लागे पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदर नित जागी पां भगत ते स्वामी मिले जिसके मत बुलाना जिसके मत कलैना चरण कमल भगत मन बूठा विण परमेश्वर सोले मूठा संजना की तोड़ नित बांछ नाम सचे का गहना उठत बैठत हर हर गाइया जिस सिमरत वर ने चल पाइया नानक को प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माजस्पदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

आपे बगले हे प्रसाद चा या पे बक्स मिला मणिया आप करे तर आप करा हे पूरे गुरु के शब्द मलाए नानक नाम मिले बढ़ियाई आपे मेल मला जाओ माल महला तीजा एको आपरे परिचंदा गुरम वेखा ताए मन पिना तिहना ताज सहज सो पाया एको मन वसामणिया ओं बारी ज्यो वारी एक स्यों चित लावणिया गुरमति मन इकत कर आया सचे रंग रंगणिया गुरम वेखा ते मन पिना तिना ता सहज सो पाया एको मन वसावणिया एको आ फिरे प्रसन्ना गुरम वेखा ताए मन पिना तिना ताइक सहज सो पाया एको मन वसावणिया ओं वारी ज्यो वारी एक स्यों चित लावणिया एक स्यों चित लावणिया गुरमति ओं वारी ज्यो वारी एक स्यों चित लावणिया गुरमति मन एकत कर आया सचे रंग रंगणिया रहाओ ये जग पूला तै आप लाया एक साधु जे लोपाया अंदन सदा फिर प्रभुला बिना में दो पावणिया जो रंग रात कर्म बदाते गुर सेवा ते जुग चारे ही जाते जनो आप दे वड़ियाई हर के नाम समावणिया माया मोह

गुरम विलक ने चख डीठी अंतर परगास महारस पीवै दर सच्चे शब्द वजा बणिया औ वारी जो वारी गुर चरणी चिल्ला बणिया सतगुर है अमृत साचा सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुका बणिया रहाओ।

साधी अंदर पी जाए। वैसो थान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणे। जेहनु न करे सो पाए, गुर प्रसादी हम बह जाए। नानक नाम वसे मन अंतर, दस चे सोभा पावणे। आज महला तीजा सतगुर सेव्या।

पंडित पढ़े साधन पावे, दूजे पाए माया मन फरमावे, माया मोह सब शुद्ध गवाई, कार्या उगन पछो तावणिया, सतगुण रेता तक पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना मोती का दर पावणिया, किलवे काटे क्रोर नवारे, गुर का शब रखे और तारे, साच रते सदा बैरागी, ओ मैं मार मिला बणिया, अंतर रतन मिले

उत्पत परलो शब्द होवै, शब्द ही फिर उपत होवै, गुरम वरते सब आपे सच्चा, गुरम पाए समावणिया, ओं वारी ज्यो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुरते शाम भगत करे दिन राति, गुण कै गुणी समावणिया रहाओ, गुरम धरती गुरम पाणी, गुरमुख पौन बसंतर खेले बडाणी, सो निगुरा जो मरमर जमे, निगुर आवण जावणिया, तिन कर तेग खेल रचाया, काया शरीरे विच सब किछ पाया, शब्द भेद कोई बैल पाए, मैले मैल बलावणिया, सच्चा सा सच्चे बन जा रे, सच वडन जगो हेता पारे, सच वे आजे सच कमावे, सचो सच कमावणिया, बिन रासी को वत क्यों पाए, मन मपूले लोग सुबाए, बिन रासी सब खाली चले, खाली जाय दो पावणिया, एक सच वणजे गुर शब्द।

सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाइए नहीं, शब्द मेल मलाह हुणिया। गुरमुख अलप रहे संसारे, गुर के तकिए नाम आधारे।

यो पीड़ सप्ती सदा देखा जय आख को वाये जे लोड़ा चंगा अपना कर पुन्नो नी सदाये जे जरवना पर हर जर वेश करे दिया ये को रहना पर ये पाये को रहना पर ये पाये।

पुत्रे कृंग तन कृह शतोय सच तां पर जानिए जां सच तरे प्यार नाउ सुन मन रहसी तां पाए मुख द्वार सच तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो धरत काया साध कै विच देव करता पियो सच तां पर जानिए जां सिख सचीले दया जाने जी की किस पुन दान करे

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं।

पर से गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुआ सिवत कसम दीनू अरसों कुरसों चटिया तोद डिठे सचे पातिशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच।

जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। महाराज कहते ने जियो पाए, जियो पाए का अर्थ है जिंद पा के। आप एक बचन होर भी बाणी विचों पढ़ते हैं, जियो पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए, अखी देखे जेवा बोलें कन्नी सुरत समाए। आख्या जिन्हें जिंद पा के तेरे तन नू साजिया, जियो पाए तन साजिया, बड़ी सोहनी तेरी बणतर बनाई, रखिया बणत बनाए, अखी देखे अखां नाल तू देखदा है, जेवा बोलें जुबान द्वारा तू बोलदा है, अखी देखे जेवा बोलें कन्नी सुरत समाए, कन्ना राही सुन के सुरत विच गल नू टिकाउणा है, जिन रच रचिया तिसे न जाने अंधा अंध कमाए, जिन्हें तेरी रचना रची हे अन्ने मनुख तू उसनू क्यों नहीं जानता, उस रब नू क्यों नहीं चेते करता। जियो पाए पिंड जिन साजिया, महाराज कहिंदे जिन्हें पिंड साजिया, जिन्हें शरीर साजिया, दिता पहनण खाण, जिन्हें पहनण लई दिता खाण लई दिता। वेखो बच्चे का जन्म होया, धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने सुखमणी साहब की बाणी विच इह आख्या, बच्चा बालक सी, उहदे दंद नहीं सन, उहदा अजे मेदा इन्ना मजबूत नहीं सी, जदों इस सृष्टि उत्ते उस बच्चे का आगमन होया, उहदा जन्म होया, ते मां दे अस्तना विच उहने दुध का प्रबंध कर दिता। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल तेरा मूल की सी, तेरा वजूद की सी पानी दीआं बूंदा, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ गन मैं जिने उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है, दूध भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरध पया उपर साक सैन, मुख प्याऊ बैठ को दैन। तो महाराज कहन लगे जियो पाए पिंड जिन साजिया, जिन्हें जिंद पा के शरीर नू साजिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खाण, जिन्हें तेनू पहनण लई खाण लई दिता, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। तो महाराज ने आख्या तू हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने

0: आखिया मैं कुर्बान जाना मेहरबान वाहगुरु कुर्बान जाना। तो सतगुरु कृपा करे धन गुरु अर्जन साहब महाराज के ये बचन साढ़े जीवन का आधार ते आसरा बन असी गुरु दे अगे ये हमेशा पढ़ते रहिए गाँवते रहिए भी हमारी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण तू अपने सुभा मुताबक वाहगुरु साड़ी रखवाली कर सानू संभाल। तो ये अज के पावन मुख वाक सुरट राग विच गुरु अर्जन साहब ने जिहड़ा उचारण किया इसकी विचार भुला चुका की खिमा सबना का धन्यवाद जी।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हार्दिक धन्यवाद भाई सिपाही।

चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। आखा कोई चित्रगुप्त, हुण चित्रगुप्त दा वैसे अखरी अर्थ जे तुसीं करो ना ते समझ इह लगदी आ वी जे ओ चित्र जिहड़ा गुप्त है, ओ चित्र जिहड़ा नज़र नहीं आउंदा, किहड़ा चित्र है साडा अंदर एक चित्र है जिहड़ा गुप्त है जिहड़ा सानूं नज़र नहीं आउंदा, ओ अंदरों हिसाब किताब सारे करी जांदा। चित ते गुप्त ही हुंदा बंदे दा ना, दिखदा थोड़ा, शरीर दिखदा, चित थोड़ा दिखदा। हुण चित दे उत्ते वी ते बहुत कुछ लिखिया जांदा ना, चित्रगुप्त दा काम की हुंदा लेखे लिखणा। तो मन जिहड़ा है उह चित्रगुप्त ही है, लेखे चंगे भी लिख रहा ते लेखे माड़े भी लिख रहा। तो जिहड़ा बाहर दा चित्रगुप्त कोई मन्निया गया, बाबा जी कहिंदे उह वी तेरे हुकम च है, परमेश्वर जी मैं तेरी आराधना करदा, उह वी तैनूं ही गा रहा, उह वी तैनूं ही गा रहा। जदों आपां किसे नूं वड्डा कहना होवे ना जी, उदों फिर इह शब्द वरत्या जांदा वी आ जिहनूं तूं वड्डा कह रहा इह वी उहनूं ही गा रहा है, इह वी उहनूं ही चेते कर रहा, इस करके मैं ते उहनूं चेते कर रहा जिहनूं तेरा चित्रगुप्त वी चेते करता है। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। महाराज ने कहा गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे, चाहे शिव है चाहे इंद्र है चाहे ब्रह्मा है, कोई देवी देवता है आख्या जिन्हां नूं लोक बड़े सुंदर मान रहे ने भी वह भी तेरे ही सवारे हुए ने, वह भी तेरे हुक्म तो बाहर नहीं, वह भी तेनूं गा रहे ने। गाउण वालियां दी कोई कमी नहीं दुनिया दे विच, बढ़ेरे गा रहे ने, इंद्र भी गा रहा। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले। लोग देवत्या की पूजा करते हैं तो बाबा नानक जी ने कहा भी नहीं ये देवते भी तेनों गा रहे हैं, ये भी तेरी आराधना कर रहे हैं। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, वे वे सिद्ध जे समाधियां ला के बैठे ने वह भी तेरे हुक्म ने, वह भी तेरे हुक्म तो बाहर ही नहीं, मतलब उन्हों का किया हो करम हुक्म नहीं है, चेते रख लो। ये नहीं है भी आप किसी आके जी जो रब की भगती कर रहे वो हुक्म च है, गल यह है भी ये जे वे वे सिद्ध अपने आप को हवाने वाले ने ना अखीर यह भी तेनों गाँवते ने, तेरे ऑर्डर ही दुनिया च आते हैं, दुनिया चले जाते हैं, इन्हों भी तेनों ही गाँवना पैंता, तेरी चाकरी करनी पी, तेरे हुक्म तो बाहर नहीं है। जिवें असीं सतगुरु की बाणी गुरु अर्जन साहब का एक बचन है उत्थे कहिंदे ने रहण ना पावे सुर नर देवा, नहीं रह सकते वड्डे वड्डे देवते, चाहे वह राक्ष ने चाहे देवते ने, कोई मनुख है सारे इको जिहा, उहदा हुक्म सारिआं उत्ते लागू हुंदा। रहण ना पावे सुर नर देवा, ऊठ सुधारे कर मुनजन सेवा, बादशाह शाह वापारी मरना, जो दिसै सो कालै खरना। जिहड़े दिस रहे ने रब्बा तेरी मौत रूपी काल ने इन्हां सारिआं नूं लै जाणा, ये भी तेरे ऑर्डर विच ने, ये भी तेरे हुक्म विच ने। तां ही ते महाराज कहिंदे ने भी उहदे हुक्म नूं बयान नहीं कीता जा सकदा, कुछ भी उहदे हुक्म तों बाहर नहीं हैगा। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। भावें उह कोई वीर ने, भावें वह कोई जति सती ने, सारे ही तेनों गा रहे ने, सारे ही तेरे। फिर चेता रखो जो मैं गाउण की गल कर रहा यदा अर्थ है भी परमेश्वर जी तुम वे हो, यदा अर्थ ये कदाचित नहीं है भी हूँ आप किसी जति सती गाने लग पे, नहीं, जति सती भी तेनों गा रहे ने, तू वा है। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीशर, जुग जुग वेदा नाले। वे वे पंडित वे वे रिखी वो भी तेनों जुगा जुगा तू गाते आ रहे हैं। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पयाले, बाबा जी ने आख्या मोहनिया मन में मोह लैन वाली जड़िया परियां जिन्हों कह देंगे स्वर्गों दियाँ, आख्या वह भी तेनों ही गा रही। गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, हुण इत्थे फर्क है, जेते अड़ सड़ तीर्थ नाले, इत्थे शब्द वरते जेते, ये शब्द जिहड़ा जीते है ना जी, ये रहरास दे विच नहीं वरत्या गया ते ये जपजी साहब दे विच नहीं वरत्या। तो महाराज कहिंदे ने गावन तुदनो रतन उपाए तेरे, जीते 68 तीर्थ नाले, चाहे 68 तीर्थ ने ते लोक उहनां नूं महान समझ के ते उहदे विच की मारदे ने, चुभी मारदे ने, पर वह भी तेनों गा रहे ने।
गावन तुदनो जोद महाबल सूरा वड्डे वड्डे जोधे महाबली सूरमे गावन तुदनो खाणी चारे चार खाणियां मनिया गईया अंडज जेरज सेतज ते उत्पुज पर बाणी ने कहा केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र चार खाणियां नहीं महाराज ने आख्या जन्म खाणियां जिथों खाणी दा अर्थ हुंदा जिथों उत्पत्ति हुंदी है जिथों जीव पैदा हुंदे ने

सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चंदे अपन पावना होमे विचों जाए। मेरे दाता जी कहिंदे गुरु घर की सेवा ये सारे तो उत्तम सेवा, क्योंकि गुरु के प्यारे हो ऐतवार को गुरु घर विच नवे गुरु घर की अरमता की अरदास आ, क्योंकि नींह पत्थर रखे जाने गुरु घर नवा बन रहा है। वह भागे वाले ने जिहड़े सेवा विच हिस्सा पा रहे नहीं, क्योंकि मेरे दाता जी कहिंदे सेवा करत होए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। कि जिहड़े निकामी होके सेवा करते नहीं वह परमात्मा के लागे तुर जाते नहीं ना, क्योंकि गुरु के प्यारे धौल धर्म दया का पूत आ, ते धर्मी बंदा जिहड़ा है ना उहदे च दया जरूरी आ, क्योंकि जिहड़ी दया आ हुण मेरे दाता जी कहिंदे जिहड़ी दया का पुत्र आ धर्म धौल धर्म दया का पूत वह दया का पुत्र है। और जिथे दया आ गई हुण बंदा सामने गुरु के प्यारे हो पानी मंगता है, तो पानी मंगता तो कोल खलोता सी जाए उस दया ही नहीं आवे। मेरे दाता जी कहते तू धर्मी थोड़ो है, क्योंकि तेने तेरे मन च दया चाहिए वो प्रति, और जिथे दया उ धर्म खलोता है। जो गुरु नानक देव जी पंडित हरदयाल नू कहिंदे ने आ तू जनेऊ ते लैके आ गया, पर मैनू दस इस जनेऊ दे विच दया हैगी आ। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वाटा, ना इहदे च दया आ, क्योंकि पंडितो तुसी दया तुहाडे कित्थे चली गई, ना तुहाडे संतोख आ ना जत आ ना सत आ। पर यह चीजें जे इहदे च पा के मैनू दे सकदा ते दे दे, मैं पा लैने। पंडित हरदयाल कहिंदा बाबा इत्थे अट्टे दा वटिया होया आ, इत्थे अट्टे दा वटिया होया। गुरदेव कहिंदे ना ते साडी रखिया कर सकदा है ना किसे ते दया ही करदा है, मैनू तेरे जनेऊ दी लोड़ कोई नहीं, मैनू दी ओह जनेऊ चाहीदा है कि जिहनू अग ना जला सके टुट ना सके, पर जिहदे विच दया होवे धर्म होवे जत होवे सत होवे संतोख होवे। ते गुरु के प्यारे जिहड़ी दया है ना ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਾਰ ਪੰਜ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ। ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਭ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਮੋਹ, ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੀ ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ ਬੇਦਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਘੋੜੇ? ਦਾਤਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਉ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਸ
सच्चे नाही। दाता मैनू परवाह कोई नहीं किसी की, जे तू मेरे नाल है। गुरदेव कहिंदे जा पे बाबे जीवन नू जाके मिली। लाहौर की धरती उत्ते अगर तेन कोई चाहिए होवे उत्ते अपना बाबा जीवन रहिंदा है, उहनू जाके मिल लई। अज बाबा बिधी चंद करके अरदास सोध के अरदासा तुरिया गुरु के प्यारे हो भाई रूपे तो। हुण भाई रूपे तो तुरिया तीन दिन लग गए रास्ते अंदर, पर सोचा सोचदा मना की करना चाहिए कि जाके किले की कंध पाल लवा, रात नू कंध पाणा बढ़िया सारा मघोरा करा, अंदर चला जावा ते घोड़े लैके किसी तरह दरवाजा खोल के दौड़िया वा। नहीं नहीं, मन कहिंदा वेख ला इन्ने पहरेदार खलोते हुंदे ने, कितें तू कंध नू पाल लाउंदा फड़िया गया तो उत्थे कुट कुट के मोर बना देना। कहिंदा पर इदां करदा कि मना पौड़ी बहुत वड्डी लै जाना है, जदों मैं पौड़ी किला की कंध नू ला के पिछों दी चढ़ जाऊंगा। कहिंदे जे फौजियां ने वेख लिया ते तुम भी थले ते पौड़ी भी उन्होंने खिंच लैनी आ ते तेरा हाल की बनेगा। मन कहिंदा इह कम चंगा नहीं। कहिंदे पर इदां करदे आ कि व्यापारी बन के जाना है, अगर व्यापारी बन के जावगा बादशाह नू आखांगा घोड़े बेच दे। मन कहिंदा उन्हें बेचने थोड़ो नहीं, वह तो खोहदे नहीं खोहदे, वह खोहण वाला बंदा और बादशाह नू घोड़ियां दा घाटा थोड़ो है। मन कहण लगा बिधी चंदा यह भी कामयाबी नहीं मिलनी। कहिंदा चलो कोई गल नहीं, मन दड़ाउंदा दड़ाउंदा चल गया लाहौर। कहिंदा शाम पई है, इहने बाबा जीवन दे घर दा दरवाजा खड़का दिता। हुण बाबा जीवन जदों मिलिया गुर भाई मिलिया, कहिंदे ने दोने बैठे ने ते बाबा जीवन कहण लगा बाबा बिधी चंदा कि तैनू छेवें पातशाह ने भेजिया होना। बाबा बिधी चंद कहिंदा किवें पहचान लिया? कहिंदा मैं तैनू वेखिया उत्थे कि छेवें पातशाह तैनू बड़ा प्यार करदे ने। कह लगे छेवें पातशाह का की हाल है? तो बाबा बिधी चंद कहिंदा चढ़दी कला वच नहीं, चढ़दी कला वच ना है। तो बाबा जीवन कह लगा तू किवें आया लाहौर? कोई प्रचार करने वास्ते, सेवा लैण वास्ते? बाबा बिधी चंद कहिंदा घोड़े लैण वास्ते आया। कहिंदा कित्थों? बादशाह दे किले चों कढ़ के लिजाणे आ, इन्हें अपने घोड़े खोरे आ। बाबा जीवन कहिंदा तेरू की हो गया? वह बादशाह हजारां सिपाहियां दे विच रहिंदा है, किले दे जिंदरे वड्डे वड्डे लगे ने, थां थां पहरेदार खलोते ने, जिवें शेर दे घोरने चों माह दा टुकड़ा चुकण दे बराबर आ। घोड़े लियाउणी तेरे वस दा कम नहीं।